0: को छु साला कुत्ती खाने बेलामा बडा प्रेममा फसेर अन्धो भने अहिले निस्कन्न भन्छस्
1: ह निस्किन्न आमा म कहाँ जाऊ नि
0: क्या भन्यो तू क्या तेरे दवान मैंने देखे ह ला ये करे ट्रेन न करे ला
1: ह म जान्छु ह म जान्छु
0: जल्दी जल्दी निकल जल्दी निकल निकल
1: नहीं
0: निकल जा ह ह ये दरवाजे से निकल जा निकल जा और अंदर वो दरवाजा बंद कर दो
2: जी हाँ मार्केट।